0: 就算把结果说六十二年看来呀，以英地带之内可以用呢，以和提在大概第一个 workshop 看那起一打，以我以个 hint 一打，以我的那个的六十二年以和提在大概第二页开的。
1: ये आई ने कहे आई ने कनाजो तने कनाजो गुटी को गा तासी कला किया ता ये सुन पकान दे हो कुड़े किने दे ये के द कॉन्ट्रा लने तासी कला किया ता किने वने दे तू लगो जे सुन पक कुड़े के हर ये हर लके ये एवो कांडे गलत ये ता हर लके दिखती Then I got correct. I got a how lucky I do yet. Yannick, and right, it is a loo. A unit does see here, you hit the hot chicken on a zont, then I go yet, then I sent her. A unit head can a zonk which you take on you go at the work and out there. He covered and care. Tu le som pa het ne tsaga kete ko tsa ye tane a ya he le kho count and ko tsa tsi ene de ta e ye ready ko de yo ke ta tan ha ga la khuya ta ko tsa tu ye tan a ya le kho count and ke hane alla ya pa hi le ke dir ko pa kan de ko pa services ke de ye ta ye re ka la khia ta ye re het ne tsaga kete kha ko tan da a ye ne ये ताय यानी कहते हैं उगु ये हिती खाएगु ये रे हिती पगु ये तेरी ये दिन क्ले ये तेरी ये ये ऐ बच्चों रेज़ कैंसर ये तने सारे ते कोटे हैं यानी को क्या ते कोटे को क्या कहते हैं इतने ये की है नहीं इतने वो हिस्से ये कागों तन दार यानी ये को तन हो खाते गुदाय ये हो ये अर्यने तासिक है ने ये कुनाजों तन है को आय कुनी वो को गलत ये ताई को गए आकाजी
0: ऐंताती तेरे ये को गा खाने अलग है तेरे कुसी हसुत इसनी वो ते तनी कुसु से ते कुहेत से ते तुला
1: ये रिपोर्ट लेते ने वो ने ते को गा एडिंग लगाने दे सोच ए ए कुकुसे ले Sumpah pada syaitan aga betul tak akhirnya kagum tentang aku kuasa iko kerja kuasa dek le proposal kene iye kene iye lah terendet katanya aga kete aku lah ter lah kena zat asli kalau siapa tentang karya nak kau kote iye wae kau kau kudu iya kene wane te iye kote aku te kau कुछ इतने को ये तने से खुदी को गवात तने तेरे खेती को दाय
0: हाँ ता तीसरे ये सी ये आयुने तने के आया इनली ये मुदाने ने कुत्ते खेती दे ये कोला आस्त ये कोला आयुने कुछ ना खेती नहीं
1: ला ठंडे ये कोपा सर्विसेस देते ये इतने तेरे को कुछ तेरे मेलेंडा लब कैन ये अकाउंट इन कला ये पहले he hite tane ye tane ye he le ke ye ko te no kere tane te ye ye e kai te ye la ko te wa ko te la thar ko tha ko se la go sa ti tin te tane ga ke na se te ko ko shu ko de ye ko da e ko te e le he he ti te ti ju la ka go tane ko ga ta ko shu tane ga so ni he na go te he ye te tin ko te ये इन लोग से ये ये ते कह को ये ये ने तेरे को ता अगल क्या ता कह को तेरे के है ता तेरे से रात ही ले
0: इन ताती तेरे इंटू ये होशी से ता कुछ ते दिन को कुछ ते अकेले हैं के
1: ये